0: from time to time, you might hear something on Free FM that you don't necessarily like. And that's okay. We're all about free speech. Even so, you have the right to complain if you want to. For an informal complaint or to give feedback, use the feedback form on our website. We follow Broadcasting Standards Authority rules, and to make a formal complaint, you must send it in writing to Free FM's manager within 20 working days of the broadcast. Full details of the formal complaints process are available from our website, freefm.org.nz, under Contact Us. Free FM 89.0. Tui Arnareo o Te Hapori.
1: कहते हैं कि रात जितनी गहरी होती है दिल उतना साफ सुनाई देता है और इसी गहराई में आपका स्वागत है. गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड सलाम अलैकुम. फ्री एफएम 89.0 पे आप सुन रहे हैं आपका अपना शो मुसाफिर हूँ यारो, और मैं हूँ आपका मुसाफिर दोस्त जिमी. और आज की ये रात हम दोनों के नाम, सिर्फ आप और मैं, कोई कॉल नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बस एक धीमी सी रोशनी और एक हल्की सी हवा और ढेर सारी दिल की बातें.

आज सोच रहा था कि जिंदगी कभी कभी कभी रातें हमें हमारे पुराने हम से मिलाती हैं। जो बातें जो दिन में कहीं खो जाती हैं, रात उन्हें धीरे से उठा के हमारे सामने रख देती है। आज की छोटी सी कहानी छत पर बैठा चांद ठीक उसी एहसास के बारे में है। वो छत पे बैठा था, चांद कुछ और भी पास था। हवा में ठंडक थी और दिल में एक गर्म याद। उसने सोचा कि लोग बदल जाते हैं पर कुछ रातें वहीं रहती हैं।

और हमेशा यही होता है कि अक्सर हम दिन के शोर में इतने ज़्यादा घिरे रहते हैं ना कि अपने दिल की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। लेकिन रात वो बड़ी अजीब सी दोस्त होती है। धीरे से आती है, कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, अब बोलो जो क्या कहना है। मैं नहीं जानता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज की रात एक पल के लिए आपकी सारी थकान सारी दौड़ यहीं छोड़ दें। चलिए एक गाना बजाते हैं जो रात को थोड़ा सा और नरम कर देगा। स्टे ट्यून्ड।

की सबसे प्यारी सी यादें ना बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, जैसे कि वो आदमी जिसे मैं रोज शाम को अपनी खिड़की के पास बैठे देखता हूँ। वो बस आसमान को देखता रहता है, लगता है किसी का इंतजार कर रहा है या शायद किसी को याद कर रहा है। मैं उसे देखता हूं और लगता है कि हम सब ऐसे ही होते हैं, जिंदगी भर किसी ना किसी का इंतजार करते रहते हैं, किसी बात की, किसी एहसास की और कभी कभी खुद की। और फिर रात इन पुरानी शांत कहानियों को थोड़ा सुंदर कर देती है। तो मेरी जान, बस फिर आज की रात का एक वादा करिए, जहां भी हो, जैसे भी हालत में हो, थोड़ा सा प्यार खुद को भी दीजिए, क्योंकि रातें सिर्फ किसी की याद में बिताने के लिए नहीं होती, कभी कभी खुद को ढूंढने के लिए भी होती हैं। और अगर दिल में कोई बात अटकी हो तो उसे लिख डालिए, क्योंकि लिखा हुआ कभी खोता नहीं है, बस दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और एक राज की बात बताता हूं, मेरी ना एक बड़ी अजीब आदत है कि रात के इस वक्त कागज पे वो बातें लिखना जो किसी से नहीं कह पाता। अगर आज आप भी कुछ नहीं कह पा रहे तो फिर ये बात सिर्फ आपके लिए ही है। आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस लीजिए और सोचिए वो बात जो आपके दिल में है। अगर वो किसी के लिए है तो यकीन मानिए कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से वो उसके दिल तक पहुंच ही जाएगी। तो बस फिर इसी प्यारे से एहसास के साथ एक प्यारा सा गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ओनली ऑन फ्री FM 89.0 पे। सुनते रहिए, कहीं मत जाइएगा। अच्छा,

अब आप ना सच सच बताइए कि आपको भी लगता है कि रात की हवा दिन से ज्यादा सच्ची होती है। उस्माल सोच रहा था कि जिंदगी की सबसे प्यारी सी यादें ना बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, जैसे कि वो आदमी जिसे मैं रोज शाम को अपनी खिड़की के पास बैठे देखता हूं। वो बस आसमान को देखता रहता है, लगता है किसी का इंतजार कर रहा है या शायद किसी को याद कर रहा है। मैं उसे देखता हूं और लगता है कि हम सब ऐसे ही होते हैं, जिंदगी भर किसी ना किसी का इंतजार करते रहते हैं, किसी बात की, किसी एहसास की और कभी कभी खुद की। और फिर रात इन पुरानी शांत कहानियों को थोड़ा सुंदर कर देती है। तो मेरी जान बस

फिर आज की रात का एक वादा करिए, जहां भी हो, जैसे भी हालत में हो, थोड़ा सा प्यार खुद को भी दीजिए, क्योंकि रातें सिर्फ किसी की याद में बिताने के लिए नहीं होती, कभी कभी खुद को ढूंढने के लिए भी होती हैं। और अगर दिल में कोई बात अटकी हो तो उसे लिख डालिए, क्योंकि लिखा हुआ कभी खोता नहीं है, बस दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और एक राज की बात बताता हूं, मेरी ना एक बड़ी अजीब आदत है कि रात के इस वक्त कागज पे वो बातें लिखना जो किसी से नहीं कह पाता। अगर आज आप भी कुछ नहीं कह पा रहे तो फिर ये बात सिर्फ आपके लिए ही है। आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस लीजिए और सोचिए वो बात जो आपके दिल में है। अगर वो किसी के लिए है तो यकीन मानिए कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से वो उसके दिल तक पहुंच ही जाएगी। तो बस फिर इसी प्यारे से एहसास के साथ एक प्यारा सा गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ओनली ऑन फ्री FM 89.0 पे सुनते रहिए, कहीं मत जाइएगा।